अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने है तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर एक गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस वन हेल नहीं लॉन्ग, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ओ तो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

तालियां तो बजा। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
2: अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं. 15 फरमाइश. Voor maar €100 op Ujala Radio.

पूरा तोर दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, के कर साथ तू ओतो में घूमे है, और के कर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Naarden en Blaricum 6 kilometer file. De vertraging is 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen nog 1 kwartier vertraging door slecht wegdek. Daar is de rechte rijstrook dicht. Er staat een vrachtwagen met pech op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Maarhezen. Daar is ook de rechte rijstrook dicht, kost je 1 kwartier. De A6 Muiden-Lelystad is dicht bij Lelystad door een ernstig ongeluk. Voorlopig kun je het beste omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. En op de A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken ruim 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Mijn Annie. मामा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते मैं उनकी पहचान हूँ उनकी आवाज़ हूँ हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ गाना चाहती हूँ आवाज़ और खामोशी टकराते गए फिर भी सपने जिंदा हैं है ना ये नामुमकिन सपना लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो
3: उजाला रेडियो है ये सुनने वालों आपको स्वागत वेलकम प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए या तो कहिए प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप सुन रहे हैं जो

और मैं ढूंढो तो छुप जा। लता जी के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में आप सुने फिल्म जीने की राह, फिल्म जीने की राह का गीत। और लता जी के साथ अब मुकेश जी को आप सुनिए।

जिस्म मगर एक जान है हम, ओ मेरे सनम। आप सुने संगम, हाँ फिल्म संगम से, ये उजाला रेडियो है। Daar kan nummer tijdens kantooruren 020-4090807. Aur agar koi nahi mila to e-mail bhejiye info@ujala.nl.

हाँ मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तुम ही से करता है। फिल्म साजन के गीत आप सुने कुमार सानू एंड अलका जी से।

हंसनी मेरे हंसनी कहाँ उड़ चली, जहरीला इंसान, जहरीला इंसान फिल्म का नाम और किशोर कुमार गायक। आज हमारा प्रोग्राम में उजाला रेडियो पर आप सुने हैं।

अब चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। आशा जी के साथ मोहम्मद रफी साहब को आप सुने फिल्म यादों की बारात से।

और बहुत अच्छी बात, इस गीत में हमें लगा कि तूने काजल लगाया और देखो दिन में रात हो गई। इतनी जल्दी, इतना आसान, दिन को रात में बदल देती है काजल, बस काजल।

किशोर कुमार से आप सुने फिल्म महान का गीत कि जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है, जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है, अब तो आंखें बंद करके चले के परी।

इरावादा मोहम्मद रफी एंड सुषमा श्रेष्ठा की आवाजों में। फिल्म का नाम हम किसी से कम नहीं। ये लुस्तना रुझाला रेडियो ओम दत्यायत फुर्सेल होर्ट या जोख।

0: हम लोगों का तार का नंबर 020-4090807। Wil jij een reactie achterlaten? I-program per? Stuur dan een mailtje naar info@apenstaartujala.nl. Ter attentie van Vijay.
1: यहाँ भी आ पहुँचे?
2: आया हूँ, अभी पहुँचा नहीं।
1: पहुँचे हुए मालूम होते हो।
2: आपकी दुआ है।
1: काम करते हो यहाँ?
2: कहिए क्या सेवा करूँ?
1: हार चाहिए, चाहिए।
2: ऐसा हार पेश करता हूँ कि आपके गले से लग कर हार नहीं जीत लगे। ये देखिए, इस मखमल से गोरे गले में सच्ची मोतियों का सफेद मोती ऐसा लगता है कि जैसे चांदनी से धुले हुए आसमान में आकाश गंगा लहरा रही है। 10,000 शायद दाम आपके लिए कुछ ज्यादा है।
1: बहुत कम, कोई महंगी सी चीज दिखाइए।
2: जरूर, ये कैसा लगता है आपको? मालूम होता है दूध की झील है, उस पर सोने के पत्तों में लाल कमल खिले हैं। 25,000।
1: बस इतनी हल्की नहीं, कोई भारी सी चीज पेश कीजिए।
2: और ये देखिए, झील मिलाती हुई किरने सिमट कर आपके गले से लिपट देंगे। ये हीरे आपकी आंखों से बाजी लेना चाहते थे, मगर लगता है लजा गए बेचारे। और ठीक भी है, कहा है ना, लाज ही औरत का जेवर है। 1,00,000।
1: बात हुई ना कुछ, हीरो से बढ़कर तो आपसे बढ़कर है।
2: अब मेरी जबान से बढ़कर आप हैं।

आप सुन रहे हैं कि इस गीत में कहीं कहीं यहाँ वहाँ थोड़ी गजल मसल है पर स्लिपी सी रंदार, तो इसलिए हम गीत को निकाल देते हैं, एक और गीत को रख देते हैं। फिल्म ब्लैकमेल, किशोर जी।

वो कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टरडम से बेटा मनोज मिठू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते इतवार को 80 साल की आयु में तख्त ख्यार औत बेटा मनोज मिठू का पिता श्रीमती राजदेई मिठू नथू का पति स्वर्गीय पिता श्री शिवनंदन मिठू और माँ स्वर्गीय माँ श्री खीरिया जंगली के बेटा, 10 भाइयों और बहनों के भाई, 3 बहनोई के सार और एक छोटकी का बड़को। अम्स्टरडम जयतो उसका रहने वाला श्रीमान सुंदर प्रसाद मिठू की मृत्यु निवास स्थान पर हो गई है। इन्हें लोग झिन्नों के नाम से पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले वेलखदाख आ का रहने वाला था। अम्स्टरडम से बेटा मनोज मिठू और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते इतवार को 80 साल की आयु में तख्त ख्यार औत बेटा मनोज मिठू का पिता श्रीमती राजदेई मिठू नथू का पति स्वर्गीय पिता श्री शिवनंदन मिठू और स्वर्गीय माँ श्री खीरिया जंगली के बेटा, 10 भाइयों और बहनों के भाई, 3 बहनोई के सार एक छोटकी का बड़को। अम्स्टरडम जोयतोस द फेंसर का रहने वाला श्रीमान सुंदर प्रसाद मिठू की मृत्यु निवास स्थान पर हो गई है। झिन्नों के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया आज शाम के 3:30 बजे फमेदाख हालफीर किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवैख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। घर पर बैठक नहीं किए जाते हैं और निवेदन है फूल ना लाने के लिए। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतफार्त फुरजोरखिंग समस्त परिवार मिठू के दुख में शामिल है।

मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

पड़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

गाना रेडियो, यहाँ म्यूजिक कभी नहीं रुकता है, नहीं नोइट नॉन स्टॉप 24 घंटा लगातार तोर खातिर।

उजाला रेडियो आपकी आवाज, आपके गीत और संगीत, आपका मन प्रिय रेडियो स्टेशन, ये सब मिलाकर बनती है उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो पूरा हॉलैंड में डीएबी प्लस पर और दुनिया भर में इंटरनेट के जरिए उजाला.nl।

6:06 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, दिस इज यू आर उजाला रेडियो और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। आप सभी को तहदिल से स्वागत करता हूं। जिस हाल में आप होंगे, जहां पर भी आप होंगे, तहदिल से हम आप सभी को स्वागत करते हैं आज इस बुधवार 20 तारीख मई को, और वो भी साल 2026, जहां से लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनाम से हम फिर एक बार पेश करेंगे प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। आप सभी प्रिय सुनने वालों को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। बेहद खुशी है हम कि आप सभी फिर एक बार चून किए हुए हैं, और आज मेरे प्यारे सुनने वालों फिर एक बार आपका दिल हम बहलाएंगे रात्रि में 9 बजे तक। पिछले हफ्ते हमने प्रोग्राम आराम की थी, एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी इनका प्रोग्राम पहला आप सुन पाए थे, और आज मेरे प्यारे सुनने वालों इनका दूसरा प्रोग्राम हम सजाएंगे। फिर एक बार इनकी कुछ खूबसूरत नगमाएं जो इन पर पिक्चराइज किया गया है इनकी मूवीज से हमने निकालकर आज का ये प्लेलिस्ट सजा रखा है। एंड बॉय ओ बॉय, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेलिस्ट हो गया है ये। और नगमाएं के साथ मेरे प्यारे सुनोला हमेशा कुछ ना कुछ हमारे जो पुरानी यादें हैं उनके साथ भी जोड़े हुए हैं, तो हम और आप फिर एक बार मिलकर वो पुरानी यादें जो है आज फिर एक बार ताजा करने हम मिलकर ताजा करेंगे। तो मेरे प्यारे सुनो शुभ रात्रि आप सभी को कहते हुए अभी हम प्रोग्राम को आराम करेंगे, और आराम करने से पहले मेरे प्यारे सुनने वालों आपको ये भी बता दें कि हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम के दौरान आप स्टूडियो में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अर्शद अतविल एविल मैट मै प्रात ऑफ द व्हाट्सएप, तो 020-363-0000 पर, 020-363-0000 पर आपको ऐप करना है। और दफ्तर की कार्रवाई मेरे प्यारे सुनने वालों दत कान फ मानदाग तो मित सातदाग स्मॉर्गन्स फनाफ 10 uur tot in de middag 3 uur bij telefoon. Zomwaar is er niet waar. Subh met 10 bajje, sham met 10 bajje telk. Taar ke zariye aap daftar ko taar kar sakte hain. Apna kaam kaaj ke liye. Jaisi ki farmaishe zaruri khabre, maut ke khabre. Jankari information ke waaste. 020-409-0807. 020-409-0807. Ya to kijiye lagataar. 24 ghante, 7 din. किसी भी दिन किसी भी वक्त किसी भी पल आप मेल के जरिए आपकी फरमाइश जरूरी खबरें मौत की खबरें के लिए आप जानकारी प्राप्त करना चाहोगे इंफॉर्मेशन लेना चाहोगे तो आपको मेल करना है info@ujala.nl स्टूर मेल चे नॉट info@ujala.nl। देवानंद साहब जी का बहुत सारे मूवीज हिट हुए हैं और इनके बारे में इतने सारे आर्टिकल्स लिखा गया है, बस आप इसे गूगल कर ले, इनके बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहोगे क्या क्या नहीं लिखा है, बाप रे दादा। तो आप अगर जानकारी लेना चाहोगे उनके बारे में तो आप जाइए इंटरनेट पर, जरूर से जरूर उनका नाम अगर आप वहां पर गूगल पर फरमाएंगे इतने सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। और हम आपको उनके सिर्फ म्यूजिक जो है हमारी ये प्रोग्राम में आप तक हम पेश करेंगे। आज का ओपनिंग सिलेक्शन की ओर तो हम आपको ले चलते हैं, और वो है एक नगमा फ्रॉम द मूवी साहेब बहादुर। ये फिल्म जो है मेरे प्यारे सुनने वालों 1980 का है, नीघंतिन तख्त, और राजेंद्र कृष्ण इनका लिखा हुआ गीत है। किशोर कुमार गीत गाएंगे और वो भी मदन मोहन के साज और संगीत पर, कि राही था मैं आवारा और फिरता हूं मैं मारा मारा। एंजॉय मेरे प्यारे सुनने वालों, एंजॉय बैक टू द फ्यूचर, आप ही का फेवरेट रेडियो स्टेशन पर उजाला रेडियो, और एंजॉय दिस सॉन्ग।

था ही था मैं आवारा और फिरता था मैं मारा मारा। हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, राजेंद्र कृष्ण जी इनका लिखा हुआ गीत किशोर कुमार ने गाए हैं मदन मोहन के साज और संगीत पर। आज का ओपनिंग सिलेक्शन जो हमने निकाले हैं 1980 नेहतीन तख्तख का फिल्म साहेब बहादुर। साहेब बहादुर मेरे प्यारे सुनने वालों एक फिल्म जो देव साहब जी के बड़े भाई चेतनानंद जी ने डायरेक्ट किया है और देव साहब जी ने काम किया है प्रिया राजवंश के साथ ये मूवी में। और इन दोनों के अलावा मैं देखता हूँ ओम प्रकाश भी है, आयुष जोहर पेंटल, आगा मुकरी, के एन सिंह और असरानी साहब जी। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, आप ही का मनचाहत और फेवरेट स्टेशन। मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे, तहे दिल से आप सभी प्रिय सुनने वालों को फिर एक बार स्वागत करता हूँ और बेहद खुशी है हम कि आप सभी भी फिर एक बार जुड़े हुए हैं उजाला रेडियो के साथ। लाइफ एंड आर एक यू आर के स्टूडियो रतनाम से पेश कर रहा हूँ प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर, आज फिर एक बार 6 से 9 बजे तक। और आज प्रोग्राम फिर एक बार देवानंद साहब जी का, इनके मूवी से इन पर पिक्चराइज किया गया नगमा आप तक पेश हम करने वाले हैं फिर एक बार। न्यू 3 मिनट 4 o'clock फन हाल ऑफ सेफ, सरे 6 बजने में 10 मिनट बाकी है और आपको झुलाएंगे मेरे प्यारे सुनोल पिछले हफ्ते की तरह और हमेशा जो जैसे मैं करता हूँ नए पुराने। तो 80 से हम वापस चलेंगे 1981 की ओर। फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है, जब प्यार किसी से होता है, मशहूर मूवी। और ये मूवी से 2 नगमाएं आगे पीछे आप तक हम पेश करेंगे। ये दोनों नगमाएं ही मैं देखता हूँ हसरत जयपुरी जी, हाँ हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ है, संगीतकार है शंकर और जय किशन और रफी साहब जी दोनों नगमाएं गाएंगे। पहला गीत कि जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो और उसके बाद में तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी।

सारेगामा पा मारेगा सारेगाओ, चारों चंद्र की चंचल चितवन, किशोर कुमार और लता जी की आवाजें, अमित खन्ना का लिखा हुआ गीत, ये दोनों ने मिलकर गाए हैं राजेश रोशन के साज और संगीत पर। 1980 नेहा दीन ताहता का फिल्म मनपसंद से हमने नगमा को निकाले, और ये फिल्म का डायरेक्टर बासु चटर्जी, और आपको मालूम होना चाहिए सभी गाने लिखा गया है अमित खन्ना जी के जरिए, और अमित खन्ना जी भी ये फिल्म का प्रोड्यूसर, जिसमें एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी ने काम किया है, टीना मुनीम के साथ महमूद साहब जी, गिरीश कर्नाड, जलाल अग्गा, सिंपल कपाड़िया बिरबल और लीला मिश्रा। हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते मेरे प्यारे से नॉलो चेक www.ujala.nl www.ujala.nl। एक मूवी का डबल फिर एक बार सेवा में हम पेश करेंगे आप सभी का। फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने, मतलब ये कि हम 80 से फिर वापस चलेंगे 1963 के ओर। फंतख्तख ननी खंतिंद्रियन सेस्तख तेरे घर के सामने, दो नगमाएं फिर एक बार हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ, एक प्यार भरा एक दर्द भरा। और मैं देखता हूं संगीतकार जो है एस देव बर्मन, सचिन देव बर्मन मेरे प्यारे सुनने वालों, और रफी साहब जी ये दो नगमाएं गाएंगे, जैसे मैंने कहा एक प्यार भरा और उसके बाद में एक डट भरा। पेश करता हूं

तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में, जाने ना मेरा दिल ये दीवाना। और उससे पहले मेरे प्यारे सुनो लो, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो रे। दो खूबसूरत नगमाएं रफी साहब जी की आवाज में हमने आप तक पेश किया है। नगमाएं लिखा गया है हसरत जयपुरी जी के कलम से और एस डी बर्मन यानी कि सचिन देव बर्मन संगीतकार। 1963 नेखतिंद्रियन सेस्तक का फिल्म तेरे घर के सामने से हमने ये दोनों नगमाएं निकाले हैं। एक फिल्म जिसका प्रोड्यूसर और एक्टर दोनों ही एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी, डायरेक्टर इनके छोटे भाई मिस्टर गोली विजयानंद, और नूतन ने भी साथ दिया है ये फिल्म में। ओम प्रकाश जी, यंकी दास, राजेंद्र नाथ और कौन है, मुमताज बेगम, प्रतिमा देवी, रशीद खान और प्रवीण चौधरी। दिस इज यू आर मेरे प्यारे सुनने वालों और 7:45 का वक्त है। अभी 7 बजे इश्तिहारे आप सुनेंगे और जहां तक मैं देख सकता हूं तो खुशी की बात है मृत्यु समाचार नहीं है प्रोग्राम में, तो मतलब ये कि सूचनाओं के बाद हम बहुत ही जल्द फिर सेवा में हाजिर आएंगे लेकर ये प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। फिलहाल तो हम आपको 63 से ले चलेंगे 1977 के ओर। नीहतिन सेवन सेवन फिल्म का नाम कालाबास, और कालाबास का एक नगमा जो किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी मिलकर गाएंगे। ये आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ नगमा है और कल्याण जी अनान जी संगीतकार। ये नगमा मेरे प्यारे सुनने वालों,

हमसे हाँ हाँ कसम से। किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी की आवाजें, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं, और वो भी कल्याण जी आनंद जी के साझ और संगीत पर। 1977 का मूवी फिल्म कालाबाज से हमने नगमा को निकाले। यश खोली ने प्रोड्यूस किया है, अशोक रॉय ने डायरेक्ट किया है, देवानंद साहब जी, सीनतमान असरानी और देव कुमार का एक फिल्म। मेरे प्यारे सुनो लोग, घड़ी की तरफ मैं देख रहा हूं तो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, और वो भी 7 बजे की ओर। मैं एक मूवी वापस जाना पड़ेगा 77 से 1965, निहतीन फाइव एंड सिस्टर। फिल्म का नाम है 3 देवियां। ये फिल्म से 2 नगमाएं निकालेंगे, मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ और जिसका संगीतकार है एस डी बर्मन, सचिन देव बर्मन। पहला गीत किशोर कुमार और लता जी मिलकर गाएंगे, और उसके बाद में एक गीत आप सुनेंगे रफी साहब जी की आवाज में। दोनों नगमाओं के बाद मेरे प्यारे सुनने वालों ब्रेक होंगे 7 बजे का, और ब्रेक के बाद आप सभी से फिर हम मिलेंगे। ये फिल्म 1965 का है, निहतीन फाइव एंड सिस्टर, 3 देवियां का जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है अमरजीत, देवानंद सिमी नंदा, कल्पना सुलक्षणा आईएस जोहर का एक फिल्म। तो एंजॉय द नगमास, और मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

0: आपके घर पे आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

पी और जी, मेरे प्यारे सुनने वालों, टू पी और जी कहता है ये कबीर, मेरे प्यारे सुनने वालों, किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सभी ने सुना है, अमित खन्ना जी का लिखा हुआ और किशोर कुमार ने जो गाए हैं राजेश रोशन के साज और संगीत पर। देश परदेश फिल्म का नाम और ये फिल्म 1978 का है। एक फिल्म जो एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी ने प्रोड्यूस डायरेक्ट किया है और मूवी में भी एक्ट किया है। देश परदेश में इनके अलावा टीना मुनीम को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। अजीत भी है, प्राण साहब जी, अमजद खान, टॉम एल्टर, प्रेम चोपड़ा, डॉक्टर श्री राम लागू, इंद्रानी मुखर्जी, सुचित कुमार, भरत कपूर और कौन है, सुधीर, हाँ जी, महमूद साहब जी, ऑफ कोर्स महमूद साहब जी, ए के हंगल, बिरबल, पेंटल, जंकी दास और राज मेहरा। ये उजाला रेडियो है, मेरे प्यारे सुनने वालों, मैं हूं आपका यारो का यार रतन राम दुलारे पांडे और उजाला रेडियो के स्टूडियो रोटरडाम से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। आज दूसरा हिस्सा जो हम सजा रहे हैं, बना रहे हैं आप सभी के लिए बहुत प्रेम और प्यार के साथ, एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी का, इनके पॉपुलर मूवी से इन पर पिक्चराइज किया गया हुआ खूबसूरत नगमाएं हमने निकाल कर आज का प्लेलिस्ट सजा रखा है और आपको झुला रहे हैं, कभी हम ऊपर चढ़ते तो कभी नीचे, जैसे कि अख्तन सईफ अंतक में अभी गीत फिल्म देश परदेश का आप सभी ने सुने हैं और आपको अब हम एकदम वापस ले चलेंगे निहतिन सेव नन फाइव तक के ओर 1957 57 का फिल्म 9-2-11 से दो नगमाएं निकालेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों और नगमाएं मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ है और जिसका संगीतकार एस दे बर्मन, सचिन देव बर्मन। पहला गीत जो आप सुनेंगे रफी साहब जी और नाइटिंगेल आशा जी की आवाज में, एक छेड़छाड़ रोठना मनाना गीत और उसके बाद में एक नगमा आशा जी जो किशोर कुमार के साथ मिलकर गाएंगे। तो चलो सुनते हैं ये दो नगमाएं फ्रॉम द मूवी 9-2-11।

हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, और जो है जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनो किशोर कुमार की आवाज। और उससे पहले आप सभी ने सुना है गीत रफी साहब जी और आशा जी का, काली के रूप में या कली के रूप में चली हो धूप में कहां। दो नगमाई मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ और जिसका संगीतकार थे एस डी बर्मन, सचिन देव बर्मन। हमने निकाले हैं फिल्म जिसका नाम है 9-2-11 और ये फिल्म 1957 का है, नीतिन सेवनन फेफ्त। फिल्म का डायरेक्टर मेरे प्यारे सुनने वालों विजयानंद देवानंद, कल्पना कार्तिक और जीवन का एक फिल्म जिसमें शशिकला भी है, रशीद खान, ललिता पावर और मदन पुरी। और कल्पना जी देवानंद का या वसुफ्राव। घड़ी की तरफ मैं देखूं तो झांकू तो 4 मिनट बाकी है सरे 7 बजने में मेरे प्यारे सिनेमा फिर उन्हें तो वोट क्लोक फन हालफाख। और एक छलान फिर एक बार लगाएंगे 20 साल का, वहां फन 57 नार 77 1977। फिल्म का नाम डार्लिंग डार्लिंग और दो नगमाएं ये फिल्म से निकालेंगे मेरे प्यारे सिनेमा जो आप तक हम पेश करेंगे। दोनों ही नगमाएं आनंद बख्शी जी ने लिखा, संगीतकार राहुल बर्मन आर डी बर्मन। और यादा मुझे कैफ स्पीक हो या एक हेप्सी हियर सॉरी। दो नगमाएं किशोर कुमार का हम पेश करेंगे। पहला गीत किशोर कुमार अकेले गाएंगे और उसके बाद में किशोर कुमार नाइटिंगेल आशा जी के साथ मिलकर गीत गाएंगे। एंजॉय मेरे प्यारे सुनो, दिस इज यू आर बैक टू द फ्यूचर। देवानंद साहब जी का प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से।

या रात गई बात गई समझे। और उससे पहले की जो आप सभी ने, ये औरत है या वो औरत है और ये है शराब, इन दोनों में कौन है खराब। दो नगमाएं किशोर कुमार का गाया हुआ और ये आखिरी नाइटिंगेल आशा जी के साथ। दो नगमाएं आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ और जिसका संगीतकार आर डी बर्मन थे, राहुल बर्मन। फिल्म का नाम डार्लिंग डार्लिंग मेरे प्यारे सिने वालों, डार्लिंग डार्लिंग 1977 का मूवी है। निहतिन सीव नसीव तक गोगी आनंद जी का डायरेक्ट किया हुआ मूवी जिसमें देवानंद साहब जी ने काम किया है सिने तमान के साथ, प्रेम चोपड़ा महमूद साहब जी, जीवन दुर्गा खोती नदीरा महमूद, धीरज कुमार हेलन और बिरबल।

आपको हम कहां ले चलेंगे दतमुति कीफ कई कहोड़ सीफ न सीफ तक से हम वापस चलेंगे 1955 1955 तक। हाँ एक वस नहीं खबोर हो फिल्म मैंने देखा बहुत खूबसूरत मूवी है और ये मूवी में तमाम नगमाएं लाजवाब बेमिसाल है। आज एक फरमाइश वाला नगमा निकाल रहा हूँ एक गीत जो मुझे बहुत सालों तक वापस ले चलेंगे सूरीनाम में जब भी शादी वादी होता था तो ये गीत फरमाइश किया जाता था और आपको तो मालूम है मुझे फरमाइश वाला सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं। फरियारी शादी विदाई को मारो लोड़ी वाला सॉन्ग अरे बाप रे दादा सो आई

0: दी सॉन्ग पुराने हैं, ओरिजिनल है, और मैं देखता हूँ गीत जो है शैलेंद्र जी का लिखा हुआ गीत है और एस डी बर्मन सचिन देव बर्मन संगीतकार है, दादा हेमंत कुमार जी गीत गाकर सुनाएंगे मेरे प्यारे सुनने वालों। और ये गीत भी कुछ इस तरह से है कि शादी हो रहे हैं और वो भी शिव भगवान जी का, और इसके सिलसिले में बहुत खूबसूरत गीत बनाया गया, सजाया गया और गाया गया है। फिल्म में देवानंद साहब जी पर पिक्चराइज किया गया है, वो नगमा आप तक मैं पेश करने जा रहा हूँ, हियर ऑन यू आर। फिल्म का नाम मुनीम जी और आप सुनेंगे दादा हेमंत कुमार जी।
1: बम बम भोला

हम शिव जी बिहानी चले पालकी सजाई के। बहुत ही खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, दादा हेमंत कुमार जी की खूबसूरत आवाज में हमने आप तक पेश किया है। और ये गीत जो है मेरे प्यारे सुनने वालों, मुझे भी बहुत सालों तक वापस ले चल रहे हैं, जब भी मैं बहुत छोटा था, जहां सुबह होते थे हमारे घर में मेरी माता जी पिताजी रेडियो को ऑन करते थे और इस तरह के नगमाएं हमेशा हुआ करता था रेडियो पर। एनार्मेनिक या शादी वादी जब होता था, फरमाइश होता था, ये गीत मुझे याद है। आजकल कहाँ, बहुत कम लोग इस तरह के खूबसूरत नगमाएं आप फरमाइश करते हैं। हालांकि ये गीत इतने सारे बातें कह रहे हैं, लेकिन समझने की बात है। हाँ, नतुलक थोड़ा सा मस्ती वस्ती भी इसमें है, होना भी चाहिए। शैलेंद्र जी का लिखा हुआ ये गीत था और संगीतकार सचिन देव बर्मन, एस डी बर्मन मेरे प्यारे सुनने वालों। मुनीम जी फिल्म का नाम, और ये फिल्म 1955 का है। नीहतीन फैफ एंड फैफ तक सुबूत मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है, देवानंद साहब जी और नालिरी जयवंत का एक फिल्म जिसमें प्राण साहब जी भी है निरुपा रॉय। और ये फिल्म बहुत खूबसूरत है मेरे प्यारे सुनने वालों, यकीन से हम कह रहे हैं। मुनीम जी बहुत खूबसूरत मूवी है, गाने लाजवाब बेमिसाल है। देवानंद साहब जी का ये फिल्म विद नलिनी जयवंत, लता जी की कुछ खास नगमाएं हैं, गीता दत्त जी का, लेकिन हेमंत कुमार का ये नगमा और भी नगमाएं हैं जो हेमंत कुमार ने गाए हैं, और किशोर कुमार का एक मशहूर नगमा भी ये फिल्म में भी है। हम आपको ले चलते अगले मूवी की ओर मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये अगली मूवी से भी दो नगमाएं निकालेंगे। ये दो नगमाएं के बाद हम ब्रेक की ओर पर चलेंगे 8 बजे का। और आपको मालूम रही मेरे प्यारे सुनने वालों, कल रात्रि को मोरखनाफंत 21 तारीख मैं को आपका सेवा हम करने चले आएंगे। यही स्टूडियो रोटरडम से पेश करेंगे प्रोग्राम 8 बजे से 11 बजे, दिल की आवाज विद ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग्स और कुछ दर्द भरे नगमाएं जो उसमें हमेशा शामिल होते हैं। तो उम्मीद और आशा करते हैं कि भरपूर आप मेरा साथ देंगे कल रात्रि में, फनफ 8 इन द आफ्टर टोट 11 दिल की आवाज हियर ऑफ यू आर। फैफ एंड फैफ तक से एक छलान लगाएंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, नीहतीन यार का बेना 21 नीहतीन यार 19 साल का। और हम जाकर पहुंचेंगे नीहतीन 74 तक पर। 1974 फिल्म का नाम इश्क इश्क इश्क, और ये फिल्म का दो नगमाएं मेरे प्यारे सुनने वालों आप तक हम पेश करेंगे। दोनों ही किशोर कुमार गाएंगे, और आखिरी गीत किशोर कुमार नाइटिंगेल आशा जी के साथ गाएंगे। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ नगमा है मेरे प्यारे सुनने वालों दो, और संगीतकार आर डी बर्मन, देवानंद प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एक्टर ये फिल्म का, सीना तमान के साथ शमना आसमी प्रेमनाथ इफ्तखार। और पहला गीत एक क्या नाम है फरमाइश वाला सॉन्ग है, और वो गीत पहला पेश कर रहा हूं।

0: चुप क्यों हो?
1: नहीं तो
0: खोए खोए से क्यों हो?
1: नहीं तो
0: फिर कुछ बोलो ना।
1: क्या बोलूं?

शर्माना यूं, घबराना यूं, पर्दा की ये आज रात है। नाइटिंगेल आशा जी और देवानंद साहब जी ने मिलकर इस गीत को गाए हैं। हमारे प्रिय सही लुधियानवी जी इनका लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं और संगीतकार थे आर डी बर्मन, राहुल डी बर्मन। फिल्म का नाम जोशीला, जोशीला मेरे प्यारे सुनने वालों 1973 का फिल्म है, 1973। एक फिल्म जो यश चोपड़ा जी ने डायरेक्ट किया है, देवानंद साहब जी, हेमा मालिनी, राखी और जिन पर ये गीत पिक्चराइज किया गया था, बिंदु ने काम किया है। इन सभी के अलावा भी मैं देखता हूँ प्राण साहब जी भी है, रुपेश कुमार, पटमा खन्ना, मनमोहन कृष्ण, मदनपुरी आइस जोहर, लक्ष्मी छाया, ए के हंगल, इफ्तखार, जगदीश राज, सुधीर सुलक्षणा। 10 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों और वो भी 8 बजकर। आप ही का मन चाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये, बैक टू द फ्यूचर आप सुन रहे हैं और देवानंद साहब जी, द एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी, इनका दूसरा प्रोग्राम आज हम पेश कर रहे हैं। रात्रि में 9 बजे तक आपका साथ हम देंगे आज मेरे प्यारे सुनने वालों, हमेशा की तरह। सुशीला चंद्रिका सिंह जी, हेर एंद्रू और चित्रा जी, अयत मार सबरुक, सुशीला चंद्रिका सिंह जी, अयत हम सल्फीन, आईफी जहांगीर, अयत हम सदाम, मफराव एंड मनेर बिहारी, अयत प्रेरा भैया, सुनील, अयत हम सदाम, रोहनी कल्लू, अयत रोतनाम, नरेश भैया, अयत अम्स्टरडम, प्रभा जी, अयत अम्स्टरडम सेंट्रम, और डरहा का मिका, आप सभी को डंकीवाल हम कहेंगे धन्यवाद, शुक्रिया आपके ऐप के लिए। कल रात्रि को 8 बजे से 11 बजे मेरे प्यारे से नॉलो पेश करेंगे यही स्टूडियो से, एकदम लाइव एंड डायरेक्ट, दिल की आवाज विद ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग्स और इधर उधर कुछ धमाकेदार, खतरनाक, डर भरे नगमाएं भी है। तो उम्मीद और आशा करते हैं कि आप भरपूर भी मेरा साथ देंगे कल। हियर ऑन यू आर, दिल की आवाज। ले चलते आपको अगले मूवी की ओर, जिसमें से हम 2 नगमाएं निकालेंगे। 73 से हम जाएंगे 1907, फांद्रियन से वंतख, नार नीहतीन सेस्तख। फिल्म का नाम काला बाजार और काला बाजार का 2 नगमाएं मेरे प्यारे से वालों आप तक हम पेश करेंगे। पहला गीत जो है बहुत ही खूबसूरत गीत जो मिलकर गाएंगे दादा मन्ना डे जी और नाइटिंगेल आशा जी, की सांझ ढली दिल की लगी थक चली पुकार के, नाइटिंगेल आशा जी और दादा मन्ना डे जी, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ गीत है और संगीतकार सचिन देव बर्मन। और उसके बाद में गीत जो हम पेश करेंगे गीता दत्त जी और रफी साहब जी जो मिलकर गाएंगे नगमा शैलेंद्र जी का लिखा हुआ और एस डी बर्मन के साज और संगीत पर, कि रिमझिम के तराने लेके आई है ये बरसात। दोनों नगमाएं आगे पीछे, हियर ऑन यू आर, बैक टू द फ्यूचर में।

0: रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, रफी साहब जी और गीता दत्त जी की आवाजें, और उससे पहले गीत जो मिलकर गाए थे दादा मन्ना डे जी और नाइटिंगेल आशा जी की, सांझ ढली दिल की लगी ठक चली पुकार के, दो नगमाई मेरे प्यारे से नोलो शैलेंद्र जी का लिखा हुआ और जिसका संगीतकार थे सचिन देव बर्मन, एस सी बर्मन, फिल्म का नाम काला बाजार और ये फिल्म 1907 का है। निखतिन सिस्टर देवानंद प्रोड्यूसर और एक्टर, डायरेक्टर जो है विजय आनंद इनका छोटा भाई, वहीदा रहमान के साथ इन्होंने ये मूवी में काम किया है, और इन दोनों के अलावा भी नंदा, रशीद खान, विजय आनंद ने भी काम किए हैं, किशोर साहू, लीला चिटनिस बड़े भाई चेतन आनंद जी भी है इस मूवी में, मदन पुरी और हेलेन। घर की तरफ मैं एक झलक तो नाम उन्हें बाकी है सरे 8 बजने में, नहीं हमने तो 4 o'clock फन हालफ नहीं हम। हेरवाल्डो और मार्गरेट जी, थैंक यू लिवेल आपके ऐप के लिए। हेरवाल्डो और मार्गरेट जी जो स्वाग में रहते हैं हमेशा, जब भी सुनते हैं आप ऐप करते हैं, सपोर्ट करते हैं, दिल से थैंक यू वेल, धन्यवाद, शुक्रिया। हम आपको ले चलते हैं अगले मूवी की ओर, जिसमें से हम दो नगमाएं निकालेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों। देवानंद साहब जी का प्रोग्राम हम सजा रहे हैं और गाने जो इन पर पिक्चराइज किया गया है मूवीज में इनके, हमने आज प्लेलिस्ट को सजा रखा है और उसी में से निकाल रहा हूं और आप तक पेश कर रहा हूं। फिल्म का नाम अमीर गरीब, तो मतलब ये कि हम 14 साल फिर चढ़ेंगे, से 1974। फिल्म का नाम अमीर गरीब, दो नगमाएं अब की बार आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ पेश करेंगे, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, दो नगमाएं किशोर कुमार का, पहला गीत किशोर कुमार और लता जी मिलकर गाएंगे कि बैठ जा खड़ी हो जा, और उसके बाद में किशोर कुमार का गाया हुआ एक गीत लता ने भी गाए हैं, लेकिन दोनों ने अलग अलग गीत गाए हैं ये मूवी में। किशोर कुमार का फर्शन ऑफ कोर्स हम पेश करेंगे, क्योंकि देवानंद साहब पर पिक्चराइज किया गया है कि मोनी और सोनी की है जोड़ी, अजीब पेश है। या द मुत ईयर्स ही आंद्र वन दी आंद्र मुत ईयर्स गस्पील्ड वर्ड एंड न गोवना मोनी
1: खड़ी हो जा

0: करी।
1: मुनी और सोनी की है जोड़ी अजीब, और साजन अमीर या साजन गरीब है और सजनी अमीर। और किशोर कुमार की आवाज में गीत आप सभी ने सुना है। उससे पहले किशोर कुमार ने लता जी के साथ भी गीत मिलकर गाए कि बैठ जा, खड़ी हो जा, झूम जा, अरे झूम जा। ये था दो नगमाई मेरे प्यारे सुनोल आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, और जिसका संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। निकाले हमने मूवी अमीर गरीब से, अमीर गरीब एक फिल्म 1974 का, नेहतिन फिरन सी वंत, जिसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों ही मोहन कुमार, देवानंद साहब जी और हिरनी जैसे आंखें वाली हेमा मालिनी द ड्रीम गर्ल ने काम किया है। इन दोनों के अलावा मैं देखता हूँ तनुजा भी है, प्रेमनाथ, सुचित कुमार, नाजिमा, जूनियर महमूद, सुलक्षणा, राज मेहरा, मोहन छोटी, बीरबल, मुमताज बेगम, हेलन। तो फिरन से इवन तक से मेरे प्यारे सुनोलो वापस चलेंगे 14 साल वापस, वहां फिर 3 यार तरह नारनी हथीन सेस्तक 1907, फिल्म का नाम जाली नोट। जाली नोट से दो नगमाएं निकालेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों। पहला गीत जो है और दूसरा गीत जो है, ये दोनों नगमाएं रफी साहब जी और नाइटिंगेल आशा जी मिलकर गाएंगे, दोनों नगमाएं। और ये गीत तो जो है राजा मेहंदी अली खान ने लिखा, और संगीतकार ओपी नैयर। मेरे प्यारे सुनने वालों, दोनों नगमाएं आगे पीछे रवि साहब जी और नाइटिंगेल आशा जी का गाया हुआ पेश करता हूं, हियर ऑन यू आर बैक टू द फ्यूचर में।

ओ मिस्टर दिल बड़ी मुश्किल में तूने आज डाला, और उससे पहले चांद सर्द सर्द है मेरा दिल में प्यार का हल्का हल्का दर्द है। दो नगमाई मेरी प्यारी सुनो वालों, पटना श्री मोहम्मद रफी साहब जी और नाइटिंगेल आशा जी की आवाजें में हमने आप तक पेश किया है। दोनों नगमाएं राजा मेहंदी अली खान जी का लिखा हुआ है और संगीतकार उपनयर। जाली नोट फिल्म का नाम जाली नोट, और ये फिल्म 1907 का है। नीखतीन सिस्तख, डायरेक्टर शक्ति समेंटा साहब जी, एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद और मधुबाला का एक फिल्म। स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, मोटर कार में बैठकर सवार सुन रहे हैं प्रोग्राम उजाला रेडियो पर बैक टू द फ्यूचर। तो बहुत बहुत धन्यवाद डंकीवाल स्वाग चून करने के लिए। जब भी आप सुनते हैं, आप ऐप करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसके लिए दिल की गहराइयों से डंकीवाल। अगली मूवी की ओर आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। तो एक छलान हम लगाएंगे निहतीन सेस्तक से 11 साल का, और जाकर पहुंचेंगे निहतीन नसीब तक। फिल्म का नाम गैम्बलर, और गैम्बलर से दो नगमाएं निकालेंगे। पहला गीत किशोर कुमार गाएंगे और दूसरा गीत रफी साहब जी गीत गाकर सुनाएंगे। पहला गीत एक दर्द भरा गीत है, दूसरा गीत रफी साहब जी का एक रोमांटिक सॉन्ग है। महान कवि सॉन्ग राइटर नीरज का लिखा हुआ दोनों नगमाएं हैं। संगीतकार सचिन देव बर्मन, एस दे बर्मन, और पेश करता हूं पहला गीत किशोर कुमार की दिल आज शायर है, और उसके बाद में रफी साहब जी विद मेरा मन तेरा प्यासा।

मेरा मन तेरा प्यासा पूरी कब होगी रे आशा। रवि साहब जी की आवाज मेरे प्यारे सुनोला। और उससे पहले किशोर कुमार का गाया हुआ एक नगमा कि दिल आज शायर है हम आज नगमा है। दो नगमाएं नीरज साहब जी का लिखा हुआ और जिसका संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। फ्रॉम द मूवी गैम्बलर मेरे प्यारे सुनने वालों, गैम्बलर 1971 का मूवी है। नीखती नहीं नंसी वंदक अमरजीत फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर देवानंद साहब जी का फिल्म विथ शॉटगन सुदुर्गन सिन्हा साहिरा साहिदा सापरू साहब जी किशोर साहू सुधीर इफ्तखार। मेरे प्यारे सुनों ले चलते हैं आपको अगले मूवी की ओर जिसमें से हम दो आखिरी नगमाएं निकालेंगे आज रात के लिए। फिल्म का नाम है शराबी और दो नगमाएं निकालेंगे। पहला गीत जो है एक डर भरा गीत है रजिंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ रफी साहब जी की आवाज कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आएगा। और उसके बाद में इस प्रोग्राम का आखिरी गीत हम पेश करेंगे कि तुम हो हसीन कहां के हम चांद आसमान के, एक रोमांटिक सॉन्ग जो रवि साहब जी और आशा जी मिलकर गीत गाएंगे। रजिंद्र कृष्ण जी का ये भी लिखा हुआ नगमा है। दोनों नगमाओं का संगीतकार मदन मोहन। फिल्म नीहतीन फीरन सेस्तक मेरे प्यारे सुनने वालों 1964 राज ऋषि जी का डायरेक्ट किया हुआ देवानंद साहब जी और मधुबाला का एक फिल्म। और दोनों नगमाएं चलाने से पहले मेरे प्यारे सुनोला आज जितने लोग भी साथ दिए हैं चून किए हुए हैं उन सभी को दिल से धन्यवाद शुक्रिया टंकी वेल। कल रात्रि को मोरख 21 दोनरख 21 रात्रि में 8 बजे से 11 बजे हम पेश करने चले आएंगे प्रोग्राम दिल की आवाज। तो तब तक के लिए आज्ञा आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रहा फूल तो फिर खिलेंगे और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़। टेक केयर और रिमेम्बर आई लव यू ऑल।